0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायत की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानीको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता यहाँहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप पनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइसकेको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूले समेटिएको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण संगीत प्रेमी श्रोताहरूमा अभिवादन तथा स्वागत जनाउँदै प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। पहिलो गीत 1978 सालमा दर्शक सामु आएको चलचित्र द ग्रेट ग्याम्बलर बाट रहेको छ। यस चलचित्रका निर्देशक शक्ति सामन्त थिए भने यस चलचित्रमा मुख्य कलाकारहरू अमिताभ बच्चन, जिन्नत अमान, नीतू सिंह अनि प्रेम चोपड़ा थिए। श्रोता स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट गायक आशा भोसले, शरद कुमार अनि अमिताभ बच्चनको सुमधुर स्वरमा रहेको गीत।

0: शायद तू नहीं क्या कह रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
4: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
3: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
4: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
3: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
4: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानीको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज, मा सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। श्रोता, प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं यस कार्यक्रमको अन्तिम कोसेली 1969 सालमा दर्शक सामु आएको चलचित्र आदमी और इन्सानबाट रहेको छ। यस चलचित्रका निर्देशक यश चोपड़ा थिए भने यस चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू धर्मेन्द्र, श्रेया भानु, फिरोज खान अनि मुमताज थिए। श्रोता, स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट गायक महेन्द्र कपूर अनि आशा भोसलेको सुमधुर स्वरमा रहेको यो गीत।

0: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानीको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप अनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेछौ। हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार समय 8 बज्न लागिरहेको छ। अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्र र उत्तर पूर्वी सेवा सिलोङ केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार। कृपया केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय

0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभीडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे।

0: वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरूद्व वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मॉनसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम गीतिमाला अन्तर्गत यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौं कलाकार प्रकाश श्रेष्ठ अनि दीपक खरेलको स्वरमा रहेका नेपाली आधुनिक गीतहरू। श्रोता, कार्यक्रमलाई अघि बढ़ाउने क्रममा अब अर्को गीत प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं कलाकार दीपक खरेलको सुमधुर आवाजमा सजिएको यो गीत।

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है, लेकिन एक बात का यकीन है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी होंगी। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीफ, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचानूंगा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

दिल का मेल बॉक्स शुरू हो गया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट इसमें होती है पूरी। तो रिक्वेस्ट भेजने का जो तरीका है वो एक बार सुन लीजिए फिर से, fmgoldairdelhi@gmail.com ये है ईमेल आईडी, और आपको इस पर हमें भेजना है मेल। उस मेल में आप सिर्फ अपनी पसंद की फिल्म का गीत लिखिए और फिल्म का नाम लिखिए अगर आपको पता है तो, अपना नाम लिखकर भेज दीजिए और ज्यादा कारीगरी मत कीजिएगा उसके अंदर। मैं हूं नीतू आपके साथ, और जो पहला गाना अब आप तक पहुंच रहा है ये है अजीत भावसार प्रमिला भावसार की पसंद का। इसके अलावा हरजिंदर शिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता ने भी ये गाना सुनना चाहा है। फिल्म है मेरा साया।

कुछ गाने होते हैं ना जो सदाबहार कहलाते हैं, ये उन्हीं में से था। और एक और सदाबहार गाना आ रहा है आपकी तरफ, अफरोज शेख की फरमाइश पर। इनके अलावा इस गाने को सुनना चाहा है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने।

महबूब की मेहंदी फिल्म से गाना, राजेश खन्ना पर पिक्चराइज, रफी साहब की आवाज आपने सुनी लिया होगा। अब अगला गाना आ रहा है फिल्म बहू बेगम से, शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान की फरमाइश पर।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषा

दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर नीतू के साथ। और अभी जो गाना आपने सुना ये था फिल्म गीत गाया पत्थरों ने इस फिल्म से, और इस गाने की जो फरमाइश हम तक पहुंचाई थी उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार ने। तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और अब जो गाना आ रहा है बहुत पुराना है, लाल किला फिल्म से है, और इसकी जो रिक्वेस्ट की है वो मनोहर लाल गांधी ने हम तक पहुंचाई है।

धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा की पसंद पर ये है अगला गाना प्यार ही प्यार फिल्म से। दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

इसी के साथ अब वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले। दिल का मेल बॉक्स यहीं तक है। अब जो अगला आखिरी गाना आप तक पहुंच रहा है वो दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू की फरमाइश पर पहुंच रहा है। फिल्म है साथी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देशभर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1ली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये 1ली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित 1ली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरूआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर 1ली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी तीनों मैच जीत लिये। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defense of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression, and the arrest of political leaders, journalists, and social workers. The Prime Minister added that institutions which form the bedrock of the country's democracy also came under assault during the period. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. She said that 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. The death toll and number of injuries are expected to rise as emergency teams assess the full extent of the damage. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. She also activated public and private health network in the most affected areas. Meanwhile, rescue operations are underway at several sites where large structures were collapsed after powerful shocks. Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. In a social media post, Mr. Modi extended condolences to the government and the people of Venezuela. He said, India stands in solidarity with all those affected and is sure to extend all possible assistance. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub-and-spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will begin a three-day official visit to London, United Kingdom today. During the visit, he will review preparations for the rollout of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and the companion Double Contribution Convention, which are set to come into force on the 15th of next month. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan and Goa, Maharashtra, Telangana, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. The weather agency has forecast thunderstorms over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Marathwada, West Madhya Pradesh and West Rajasthan. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of the northeastern region during the next 2 to 3 days. Indian stock markets opened higher today as crude oil prices eased towards the $70 per barrel mark, with tankers resuming their exit from the Strait of Hormuz following an initial peace deal between the US and Iran. Sensex started the session up 400 points or 0.52% at 77,391.07, while Nifty opened at 24,125.85, gaining over 100 points or 0.43%. In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey this morning. Thapelo Maseko hit the only goal for South Africa in the Group A match. Earlier, Mexico defeated Czech Republic 3-0 to win all three of its World Cup group stage matches for the first time in Mexico City. And that is the end of this news bulletin.

ये एक ऐसी जगह की जहां बहुत कुछ है लेकिन वो असल में जाना जाता है अपने राष्ट्रीय उद्यान की वजह से, हजारीबाग। झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर बसा है हजारीबाग। प्राकृतिक सुंदरता वहां पर है, जैव विविधता का अनूठा संगम आपको यहां मिलेगा। हजारी मतलब हजार और बाग यानी बागीचा। नाम के हिसाब से ना ये पूरा इलाका हरियाली से भरपूर है। घने साल, शीशम, बांस के जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां और शांत वातावरण जो है वो इसे आप और हम जैसे जो प्रकृति प्रेमी है ना उनके लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तो आज हजारीबाग की बातें तस्वीर में।

एक जमाना था जब हजारीबाग का इलाका ब्रिटिश अधिकारियों का पसंदीदा हिल स्टेशन हुआ करता था। उस समय वो लोग इसका इस्तेमाल शिकारगाह के रूप में करते थे। यहां की जो सबसे मशहूर जगह है वो है कैनरी हिल। इस पहाड़ी चोटी से पूरे हजारीबाग का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हजारीबाग बरही रोड पर है। हजारीबाग शहर से लगभग 10 मील दूर से शुरू होता है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लगभग 150 स्क्वायर मील के क्षेत्र में फैला है। इसमें से 80 स्क्वायर मील में खुला जंगल है, लेकिन जानवरों को बचाने के लिए 1955 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और 1976 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा भी मिल गया। पूरे 150 स्क्वायर मील में शूटिंग पूरी तरह से वर्जित है। पेड़ों को काटने या पेड़ पौधों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की इजाजत यहां नहीं है। तो जब आप वहां जाएं तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा।

हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेंदुआ, जंगली भालू, सांभर, चीतल, नील गाय और जंगली सुअर जैसे कई जो जानवर हैं उनका घर है। कभी यहां पर ना बाघों की बहुत अच्छी संख्या हुआ करती थी, हालांकि अब उनकी उपस्थिति बहुत कम हो चुकी है। इनके अलावा यहां पर सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं जिनमें मोर, कठफोड़वा और कई प्रवासी पक्षी शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में पक्षी प्रेमियों के लिए ये यहाँ पर पूरा उनकी जो पसंद है वो यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि ये मौसम ना जो पक्षी ज्यादा दिखते हैं सर्दियों के मौसम में, और उन्हें देखने के लिए यानी जंगल और जंगली जानवरों को देखने के लिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में कई वॉच टावर भी बनाए गए हैं जहां से आप उन्हें

हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली और शांत वातावरण जो है वो ट्रैकिंग, सफारी और नेचर फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। जंगल सफारी के दौरान कच्ची पगडंडियों से गुजरते हुए आपको वन्य जीवन की भरपूर झलक मिलेगी। सुबह और शाम का समय ना यहाँ पर खास तौर से स्पेशल होता है। एक तो जंगली जानवर और पंछी जो है वो उस समय सबसे ज्यादा नजर आते हैं, दूसरा कुदरत जो है वो एकदम मन को हरने वाले नजारे दिखाती है। जब सूरज की किरणें जो हैं वो पेड़ों के बीच से छन कर आती हैं और पूरा जंगल जो है सुनहरी आभा में नहा जाता है, अलग ही नजारे होते हैं।

0: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हजारीबाग का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रीय जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के घने जंगल स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने और कई तरह के दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में सहायक हैं। ये जो पूरा इलाका है पर्यावरण शिक्षा और शोध के लिए भी उपयोगी माना जाता है। यहाँ पर कई तरह के डैम बनाए गए हैं और कई और बन रहे हैं। इन्हें बनाने का मकसद यही है कि पानी के पूल्स बनाना, जहां जानवर गर्मियों में अपनी प्यास बुझा सके। इन पूल के ऊपर आमतौर पर टावर बनाए गए हैं ताकि गर्मियों में विजिटर्स इन टावर्स पर बैठकर पानी पीने आने वाले जानवरों को बिना उन्हें डिस्टर्ब किए आसानी से देख सकें। यहां जानवरों के लिए आर्टिफिशियल सॉल्ट लेक भी बनाई गई है। हजारीबाग शहर के बीचों बीच कृत्रिम झीलों का समूह है, जहां आप सुबह शाम की सैर कर सकते हैं आसपास और झील के अंदर बोटिंग का मजा ले

हजारीबाग में कोनार डैम जो है वो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस डैम पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। हजारीबाग में आप इसको रॉक आर्ट देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला देखने को मिलती है जो इस इलाके के प्राचीन इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है। वैसे हजारीबाग अपनी प्रसिद्ध चित्रकला सोहराय और कोहबर के लिए जाना जाता है जो मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती हैं और आज दुनिया भर में अपनी अनूठी शैली के लिए पहचानी जाती हैं।

0: भी नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
6: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 बियालोहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
5: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
6: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
5: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
6: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
2: श्रोता, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र श्रोता आप सुन्नुहोस् गायक कलाकार कुन्ती मुक्तानको आवाजमा रहेको यो अर्को गीतलाई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग

उमंग कार्यक्रम में मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुसैना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम
गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का

0: के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
4: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
3: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
4: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
6: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
4: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
3: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
7: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
4: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
8: नमस्कार।
4: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
8: जी,
4: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
8: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
4: जी,
8: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
4: जी,
8: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
4: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
8: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
4: युगल और सहभागिता पद्धति
8: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
4: जी,
8: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
8: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
4: हाँ हाँ, बताइए।
8: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति
8: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
4: अच्छा।
8: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
4: जी,
8: वो बहुत ही शानदार है।
4: अच्छा
8: जी।
4: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
4: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
4: गिजू भाई के अनुसार
7: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
4: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
3: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
10: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: मीडियम वेब को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट विविध भारती सेवा। केही क्षण प्रतीक्षा साच्नुहोला।

जी, तो आज हम वाद्य यंत्र के रूप में आपको पियानो की विभिन्न धुनें भी सुना रहे हैं। इस पर भी ध्यान कीजिएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने ध्यान दिलाया है कि जो वाद्य यंत्र है पियानो पर, आशा पारिक बैठी हुई थी और जॉय मुखर्जी सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि फिल्म में पियानो इस तरह का साज है जिसमें नायक या नायिका अपने दिल के जज्बात को व्यक्त करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आइए मेहरबा बैठिए जाने जा जैसे ओपी नैयर का संगीत है, जिसमें लकड़ी के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बहुत सारे गाने हैं जहां पर सपेरे की बीन की आवाज है। गीत तो बहुत सारे हैं जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, वायलिन, ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो आपकी पसंद के गीतों का इंतजार है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज लग गया है 440 वोल्ट का झटका। अरे क्यों भाई, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकेले नायक नायिका जब गाते हैं तो ज्यादातर दुख भरे गाने होते हैं या उम्मीद भरे, दोनों में गिटार या पियानो का उपयोग होता है, या कभी कभी बांसुरी भी। अनुमान लगाकर कुछ गाने लिख रहा हूं। तो देखिएगा, ये गाने हमारे गाने से मेल खा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कुछ गाने तो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत अलग सी थीम लेकर आप आती हैं, जरूर सुनेंगे नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ आपको। जी जरूर सुनिएगा, आपके लिए तो ये सफर है जहां आप हमारे साथ और मेरे साथ होते हैं, खास है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी दुल्हन बनाकर पियानो पर ये गीत गाया जा रहा है। और रफी साहब की आवाज ने तो इस जीत पर जाने लगा दी है, इस गीत पर जाने लगा दी है। अच्छा, आपने जीत लिख दिया है, गलती से कुछ आपका टाइप हो गया है, और ये गीत आपको बहुत पसंद है, तो सुनते रहिए कार्यक्रम, कहीं ये गीत आपको सुनने को मिल सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे अंदाज से पियानो के साथ फैलाए गए गीतों की बौछार होगी। नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त करते हुए पियानो की तरंगे हैं, किसी को सुनने को मजबूर कर देती हैं, चाहे उदासी हो या खुशी का माहौल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र केवल गायक के सहायक नहीं होते गायन के, बल्कि ये संगीत के प्राण, लय और सुर के मुख्य आधार होते हैं। ये रचना को गहराई, सौंदर्य और पूर्णता प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर और क्लासिक विचार आप सभी हमें लिखकर भेज रहे हैं। जी, तो हमारे दो सवाल आपने नोट कर ही लिए हैं। कुछ श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि पियानो से जुड़े कौन से गीत हैं जो आपको याद हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट से हो सकता है मेल खा जाएं, या वो गीत जो आपको पसंद हो, बताइए, जहां नायक या नायिका की उंगलियां पियानो पर थिरक रही हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि आपने अपने जीवन में कोई वाद्य यंत्र सीखा या आपके बच्चों ने सीखा, तो उसका जिक्र कीजिए। और हम लेते हैं अगला गीत अगले सफर की ओर। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज, और फिल्म का नाम हमराज। यहां पर सुनील दत्त साहब बैठे हैं वाद्य यंत्र के पास और उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ, पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये सफर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए, जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाए तो गायक कलाकार की कितनी भी अच्छी आवाज क्यों न हो, अच्छा गीत नहीं बन सकता था। इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है। और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो, इसका भजन 175 वजन, इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा, क्या ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये गाना आज के सुरीले सफर में होना चाहिए। और वहीं एक श्रोता कटी पतंग का गीत बताते हैं और वहीं लिखते हैं प्यार दीवाना होता है गाने में पियानो का इस्तेमाल हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है फिल्म आदमी का गीत है। और वहीं मधुबन खुशबू देता है दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, धीरे धीरे मचल प्यार दीवाना होता है, मैंने तेरे लिए ही ख्वाब हो तुम, बहुत सारे गीतों को हमारे श्रोता ने लिखा है और आपकी पसंद हमारी पसंद से मेल खा रही है हुजूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं धीरे धीरे मचल ख्वाब हो तुम, दिल ने प्यार किया एक बेवफा से, चले थे साथ मिलके आपके हसीन रुख पे, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और वहीं एक श्रोता ने फिल्म धर्म कर्म का गीत एक दिन बिक जाएगा को पसंद किया है। एक श्रोता लिखता है कि संगम का गाना दोस्त दोस्त न रहा प्यार प्यार न रहा, ये भी गाना उसी से जुड़ा है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तबला, सितार, हारमोनियम और अकॉर्डियन पसंद है। स्कूल के दिनों में 3 महीने हारमोनियम सीखा था पर ये छूट गया। अब कुछ साल पहले हारमोनियम खरीदा है और समय समय पर बजाती भी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वाद्य यंत्रों को लेकर इतने इतने संवेदनशील हैं, इतनी मार्मिकता आपके भीतर है और इन यंत्रों के बारे में आप भी बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हैं। आइए ऐसा ही एक और गीत सुनते हैं, रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और फिल्म का नाम दो बदन।

0: पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कही अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी, माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड, जो उस समय बहुत शुरू हुआ था, नेपाल से लाकर दिया, तब से मैं कीबोर्ड बजाता हूं और आज मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड है जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वाद्य यंत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आइए, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में भी ये गाना है जो कहते हैं कि भाई फिल्म संगम का गीत सुनाइए मुकेश की आवाज में, दोस्त दोस्त ना रहा। तो चलिए सुना देते हैं आप सबकी पसंद पर, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन, राज कपूर साहब बैठे हैं वहां इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। सामने कौन है, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, है ना।
1: के हसीन रुख पे

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूं और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफी और लता साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है।

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: काल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने यह बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमापार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
6: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पर रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरूग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
9: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
8: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
9: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
8: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
9: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
10: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र श्रोताहरू समक्ष अब प्रस्तुत छ नेपाली देशभक्ति गीतहरू। कार्यक्रमको पर्खाईमा बसिरहनु भएको तमाम श्रोतालाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदछौ। कार्यक्रममा अब सुन्नुहोस् गायक कलाकार पदम ढकाल अनि समूहको आवाजमा रहेको यो गीतलाई।

0: श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो नेपाली देशभक्ति गीत, जसको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र श्रोताहरूले अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार। केही क्षण प्रतीक्षा साच्नुहोला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको सिटी में आज सुबह हुए मुकाबले में मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व ग्रुप के ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders, journalists and social workers. In Kolkata, the death toll in the Tarazola mishap has risen to 9. A total of 29 persons were brought to the hospital following the incident. Chief Minister Shubhendu Adhikari informed in the State Assembly today that the perpetrators of the incident would be brought to justice. He said rescue operations are continuing at the accident site. He has announced 10 lakh rupees for the next of kin of those who died in the mishap and 1 lakh rupees for the injured. Prime Minister Narendra Modi has also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees to the next of kin of each deceased and 50,000 rupees each to the injured. The two-day BRICS Energy Ministers meeting has begun in Gurugram, Haryana, under India's BRICS Chairship 2026. Union Power Minister Manohar Lal Khattar has said energy is crucial for economic growth, social progress and human development. Addressing the meeting, Mr. Khattar said affordable, reliable and sustainable energy is essential for achieving development goals and the sustainable development goals. The BRICS Energy Ministers meeting will continue till tomorrow. Discussions are focusing on strengthening cooperation in areas such as energy security and sustainability, energy access and equity, and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jayashankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation.
4: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
6: Dr. Jayashankar also underscored the need for greater international cooperation in tackling global challenges, invoking India's age-old philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family, as a guiding principle for fostering a more collaborative world order. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude, which caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing rescue and recovery operations in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. The Inter-Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 30th of this month. IMD predicted heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Maharashtra, Telangana and Odisha till tomorrow. In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey today. Thapelo Maseko hit the only goal for South Africa in the Group A match. Earlier, Mexico defeated Czech Republic 3-0 to win all three of its World Cup group stage matches for the first time in Mexico City this morning. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.

स्वर्य सम्मान और संगीत से सजे इस खास कार्यक्रम स्वर्य गाथा में मैं आपकी दोस्त सुबि कपूर एक बार फिर आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जाती है। आज मैं बात कर रही हूं उस अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती, दमदार अभिनय, शानदार नृत्य और चुलबुले अंदाज से लाखों दिलों पर राज किया। जी हां दोस्तों, आज जन्म दिवस है बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा कपूर का। तो एक बार हम सबों की ओर से करिश्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं।

करिश्मा कपूर का जन्म आज ही के दिन यानी 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कपूर परिवार से संबंध रखती हैं। इनके पिता हैं अभिनेता रणधीर कपूर और माता बबीता कपूर। उनके दादा महान अभिनेता राज कपूर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। करिश्मा बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी थी। अभिनय और कला उनके खून में थी। हालांकि कपूर परिवार की महिलाओं का फिल्मों में काम करना पहले आम बात नहीं था, लेकिन करिश्मा ने इस परंपरा को बदला और अपनी मेहनत के दम पर खुद को स्थापित किया। तो फौजी दोस्तों, आगे ढेरों बातें होंगी। वक्त हो चला है कार्यक्रम के पहले नगमे को सुनने का, फिल्म राजा बाबू से अभिजीत के आवाज में।

करिश्मा कपूर ने वर्ष 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा। उस समय उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन उनमें कुछ अलग कर दिखाने का जुनून था। शुरुआती दौर में उन्होंने कई आलोचनाओं का सामना किया। कुछ लोगों ने उनके लुक्स पर टिप्पणी की तो कुछ उनके अभिनय पर सवाल उठाए, लेकिन करिश्मा कपूर ने कभी भी हार नहीं माना। उन्होंने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। 90 के दशक में करिश्मा कपूर युवाओं की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उनकी फिल्मों, गानों और नृत्य शैली ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। करिश्मा कपूर की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयां मिली फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता आमिर खान थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और करिश्मा रातों रात बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक हो गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्में दी, जैसे राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जीत, दिल तो पागल है, बीबी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, हसीना मान जाएगी, फिजा, जुबेदा इत्यादि। तो फौजी दोस्तों, आइए सुनते हैं इनकी एक सुपरहिट फिल्म जीत का यह प्यारा सा गीत अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में।

करिश्मा के हर एक फिल्मों में एक अलग किरदार से दर्शकों के बीच उनकी एक अलग पहचान बनी। उनकी कॉमिक टाइम, भावनात्मक अभिनय और नृत्य ने उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। आपको बता दूं, करिश्मा कपूर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक शानदार डांसर भी हैं। 90 के दशक में उनके गानों का जादू हर तरफ छाया रहता था। उनके डांस स्टेप युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था। चाहे सर्कस जैसा कठिन नृत्य हो या रोमांटिक गीतों की कोमल अदाएं, करिश्मा हर शैली में फिट बैठती हैं। उनके कई गीत आज भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, जैसे परदेसी परदेसी, ओए ओए, मैं तो रस्ते से जा रहा था, हुस्न है सुहाना, क्या लगता है हाय, ले गई इत्यादि। उनके गानों की लोकप्रियता आज भी उसी प्रकार बरकरार है। तो फौजी दोस्तों, कार्यक्रम के इस पड़ाव में आइए सुनते हैं फिल्म बीबी नंबर 1 का यह प्यारा सा गीत कुमार सानू और हेमा सरदेसाई की आवाजों में।

समय के साथ साथ करिश्मा कपूर ने केवल ग्लैमरस भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभाए। फिल्म फिजा में उन्होंने एक संवेदनशील बहन का किरदार निभाया, जिसकी दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहना की। इसके बाद फिल्म जुबेदा में उनके अभिनय ने यह साबित कर दिया कि वे केवल व्यावसायिक फिल्मों की स्टार नहीं बल्कि एक प्रभावशाली अभिनेत्री भी हैं। इन फिल्मों ने उन्हें अभिनय की नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया। करिश्मा कपूर ने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार, कई फिल्म फेयर पुरस्कार। करिश्मा कपूर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी है। बड़ी स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा विनम्रता और गरिमा बनाए रखा। उनका आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच उन्हें विशेष बनाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर परिस्थिति का सामना मजबूती से किया। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है का यह प्यारा सा गीत उदित नारायण और लता जी के मधुर स्वरों में।

आपको बता दूं कि 90 के दशक में करिश्मा कपूर युवाओं की फैशन आइकन थी। उनकी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और मेकअप स्टाइल को लड़कियां खूब अपनाती थी। आज भी सोशल मीडिया पर उनके पुराने लुक्स चर्चा का विषय बने रहते हैं। करिश्मा कपूर की फिल्मों ने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और मनोरंजन का भरपूर अवसर दिया। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता केवल परिवार के नाम से नहीं मिलती, बल्कि प्रतिभा और मेहनत से हासिल की जाती है। करिश्मा कपूर का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने संघर्षों को अवसर में बदला, उन्होंने आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया और निरंतर आगे बढ़ती रहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि आत्मविश्वास और मेहनत हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। करिश्मा कपूर एक अभिनेत्री नहीं बल्कि मेहनत, प्रतिभा और सफलता का प्रतीक है। उनकी मुस्कान, उनकी ऊर्जा और उनका शानदार अभिनय आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना वर्षों पहले था। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें स्वस्थ, सुखद और सफल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु, खुशियां और निरंतर सफलता प्रदान करे। तो फौजी दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी नगमे को सुनने का, फिल्म कुली नंबर 1 से कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

तो फौजी दोस्तों आज बस इतना ही। अब मुझे सुबी कपूर को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे एक रोचक और तथ्यपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। जय हिंद।

0: मिनिमम 80 to 90 रे कोही स्टाफको पनि बिलम जङ्गु सङ्सङलाई नि कोही हो लभोका हो स्यालेरी र बिसु फुटबल हुन गोलीको ल्याउनु हाई हुई लिख्नु ओरेलाम उरे सिक्किम प्रिमियर लिग हुन्छ लभो सामसा हुन्छ लभो सामका कोही न एम्प्लोइमेन्ट र बिसु कोही न फुटबल र प्रोफेसनल फुटबल र सुरेजङ हुन्छ ओरेला मात ओरेला कुयो उबी उबी कुयो लुङ्गे छ ओरे कलम ग्राउन्ड नङ कक ओरे फुटबल ल्याम्नु सिनु मरानो गोल थप बम्बु कुप सिनु ओरे क्युम बम्बु कुप सिनु ओरेला मुगुन तर उबी अलम सिक्किम प्रिमियर लिग रे अरिजङ स प्रोजेक्ट गुम ओरे करे अलम उबी कुइन लाप्सिबु औं सङ निगङ रे हुइन र अलम पुरा लाप खत एक्जामपल करे अलम सिक्किम प्रिमियर लिग सेन हान अबी कमदुङ टीम जों प्र्याक्टिस जों मात बङङ तुदु तुदु स दुम देम न प्र्याक्टिस मा छ अलम वर्ल्ड कप का इंग्लैंड प्रैक्टिस में बसिगौ इंग्लैंड उबी खाखात गुरुंग कति गुरुंग सिटेट तु प्रैक्टिस मातम गुरुंग हुयनो तुदोसा अल्योग धुमचंग दुसिसो अन अबिला कुयनो दो या कैदोला नंग बा कैदोला ल्याम मबा सिन ललात नरे खुयमला उलो मन कुयनो लाप न हुयम लम कुप नेट बु लंग अरे त कुयनो सिक्किम प्रिमियर लीग मात नरे नाम फ्ली खेसि मा नाम सरे अन उरे न अलंग नाम फ्ली सुंगतेरे लाप पुचंग न हुइदो इदो लाप न उबि सिक्किम प्रिमियर लीग ल्याम नला ल्यांगा छोल नंग न अलंग बेंगलोर एफसी कला ल्याम मबो ओंग संगनि कलकत्ता कलानि ईस्ट बंगाल रिजर्व टीम कलानी तो सयचंग ओंग नेट का अंडर 21 का ओंग नेट अभी कुसा इंडिया टीम कला लिकानी अरे जों रिजल्ट थुप लंग नंग से रे अलोंग कैदो रेंजों ल्यांग कला अलोंग फुटबोल रे नहान ता लंग नंग छु अलो मान मात मंग रे यु अलोंग अब्रेंग का कु सोशल मीडिया का कु मार लंग नंग रे ओरे रे मु ओरे रे मु
1: लिन गत मे गोंग रे अलोंग अरे सिक्किम प्रीमियर लीग अरे सा ओगजेंग न तुगुम रे ग अबिसा रेंजों मु ओंग ल चोंग न रे मना आग्या अब दो फंतोर दु थु बनी ग इच्छाला अलङ कैसा अलङ रौ मिमङ किताब मुगुन्जेर रुङसर मिमङ अङ्ग्ल छङ नन्ला ग अरे लम अरे लम नन् आज्ञा अब्दो फान्त डुबको छिमोदी नन्दा अभि रेन्सा थाम्दे नम हाको सो ग अन अलोम दु अलङ कम विशेष अरि मुन्दे अभि इङा सङ न अरे प्रिमियर लिग मुना बरे अङ प्र्याक्टिस टाइम का ग हुइम लुङ लाप न हुइन लात बोनु बाम बोनु देन हुइम कम ला बिसेबो अरे जङ बोला नियम तो ग अन अरे ला हुइसा अलाउ द कम साला अलंग दुपतोंग ला हुन अपिन कन हुइन का अलेम ला साप तु बम ग उलुम तो मान रेन सा छ लनलेट करे अरे फुटबल लमयु अरे लमरा त दुसा छ लनलेट करे ग कम जुज छ दुपतोंग का सते छ लेन टप सुवाम बनी
0: आं गुन चालोंग एसपीएल छ थामदन ग दोलियात ग अबरेन जोंग ल्यांग का बम न लेम बम बरे गुन कम कातला मतो बु अलंग इंटरेस्ट कनोंनु कै दो लेम छु गे गुंग गे फाम गुंग फाम जंग निम्बु अन अलोंग रे सिक्किम प्रीमियर लीग उन रे सिक्किम प्रीमियर लीग छ न हन रे मैच कात लेम गोंग रे ग्याफुङ टुङटक कात अन आजम टुकटा गुन थ्युम बरे अन अलोंग सिक्किम प्रीमियर लीग लात लेन रे सिक्किम प्रीमियर लीग रे लबो नेट छ हुन्छ तर लबो नेट करे क्लियर कट न रे मिनिमम 25,000, 30,000, 2 lakhs, 3 lakhs सुंगतेला कम थुप छ अलोंग सिक्किम प्रीमियर लीग न मात परे अन ओरे मान छ रे अलोंग लास्ट क नोंग छ रे इंटरेस्ट फुटबल लेम छ लिन ल मुन बु लास्ट क कुयु ल नोंग न ल कुयु लोंग तु दोसा लाइफ क ल कुयु कम ग छ कम अभी थुपम दे गुन 2005 का मुंबई को नंग मुंबई मुंबई लीग मुंबई एफसी को नंग गुन साइन मात पा गुन टोंग ठो कति कप थु 2004 का ओरे लेन न हन रे अभी तो दो से लंग कर गुन कम काटला मु मचो लंग अलोंग से ओंग सोंग द मुंबई नन मगा दे बेंगलोर नन मगा गोवा नन मगा तो दो से लंग कला बम नो तो दो से स्टेट कला बम नो कुयु कम जु ख फुटबॉल करे तो दो से लाइफ जु कोंग रे कम ला थुप छु तो दो से गन ले न हन रे तो दो से हेल्थ रे टॉप क्लास का कुयु न थोक छ गो कदसम ले नु अलोंग सुरोंग सुंगते ता फुटबल नु दो मात न कुसम थ्याका मुरा न सिबिदो नंगुरुंगला अंगो पीएचडी मात बुमरा लम गुन गु मूवी जुक बुमरा लम गुन कुसम सिबिदो नंगुरुंग निमचि लिगोंग फुटबल लिगोंग थ्याक न छ मुरा सोंग नला अन मात परे अलोंग कमला जुक तो दो से हेल्थ कनला कोइन मात खत अन अलोंग ओरे लेन दा टॉप क नंगुंग रे सुगा लिंग सरे गन लेन नान रे अलोंग गो गो गुरुंग अलोंग कैदो रेंजोंग ल्यांगसा इंगा चोंग सोनबु सङ्करे गोरे चिकप गो थाम गाडलिसो तुदोसा मातलु अलोंग डिसिप्लिन रे मनिन मे गोंरे कुयु सुला मात अलोंग अबि डिसिप्लिन लि गोंरे अलोंग सा इंगा चोंग रे डिसिप्लिन लि गोंरे डिसिप्लिन रे सिमु साक्चिन छि गलि गोंरे डिसिप्लिन लि गोंरे अलोंग गो लेन ना थामु मरात गोंरे लुक्न खामरी मात गरे ओरे डिसिप्लिन लिसो गोन रे ओरे से डिसिप्लिन लिन बरे मुगु गोन डिसिप्लिन लिन बरे सिमु से डिसिप्लिन सारिंग क दिन बंगालिंग सरे अलोंग थाल रन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीकचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित

0: निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ज में हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार साँझको 6:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

सहमति के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई। यह स्वतंत्र भारत का वह मोड़ था जहां संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया गया। भारत सरकार द्वारा हाल ही में हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 1975 के आपातकाल की घटना कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह पिछले कई वर्षों से पनप रहे राजनीतिक, आर्थिक और विधिक टकरावों का चरम बिंदु थी। सत्ता का अति केंद्रीकरण और इंदिरा ही इंडिया है का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के लोक लुभावन नारे के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। उसी वर्ष दिसंबर में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी को एक अभेद्य राजनीतिक महानायक बना दिया। कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अन्य कारणों में आर्थिक कंगाली और जन असंतोष। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, शरणार्थी संकट। 1971 में बांग्लादेश से आए लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के भरण पोषण ने भारतीय खजाने को खाली कर दिया था। वैश्विक तेल संकट। 1973 के ओपेक तेल संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी, जिससे भारत की महंगाई 20-30% तक पहुंच गई। अकाल और सूखा, मानसून के लगातार विफल होने से खाद्यान्न उत्पादन गिर गया था। आम आदमी के लिए राशन की लाइनों में खड़ा होना रोज की नियति बन चुकी थी। ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश के 17 लाख रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल को इंदिरा गांधी सरकार ने सेना और पुलिस के बल पर बर्बरतापूर्वक कुचल दिया, जिससे मजदूरों और मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति भारी आक्रोश फैल गया। इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला भी तत्कालिक कारण बना। आपातकाल की तात्कालिक पटकथा न्यायालय के एक फैसले से लिखी गई। 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी और समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और भ्रष्ट तौर तरीके के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय राजनीति की नींव हिला दी। न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया। इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया गया। उन्हें अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया गया। न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को नई व्यवस्था करने के लिए 20 दिन का समय दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश बीआर कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन वे संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकती हैं पर मतदान नहीं कर सकती। इस फैसले ने विपक्ष को इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज करने का हथियार दे दिया। 25 जून 1975 की शाम को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी, मुरारजी देसाई और अन्य नेताओं ने एक विशाल रैली की, जिसमें सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न मानने का आह्वान किया। इसे इंदिरा गांधी ने तख्ता पलट की साजिश और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनाया। 25 जून 1975 की शाम को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक ऐतिहासिक रैली बुलाई। इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वह प्रसिद्ध पंक्ति पढ़ी जो आपातकाल का नारा बनी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी ने इस रैली में सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार के किसी भी ऐसे आदेश को मानने से इनकार कर दें जो असंवैधानिक या अनैतिक हो। इस भाषण को इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने राजद्रोह और सैन्य तख्ता पलट की कोशिश के रूप में प्रचारित किया। 25 जून की रात को प्रधानमंत्री आवास 1 सफदरजंग रोड पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय और कानून मंत्री एचआर गोखले इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल को अंधेरे में रखा गया।

संवैधानिक नियमों के अनुसार आपातकाल की सिफारिश कैबिनेट की बैठक के बाद ही राष्ट्रपति को भेजी जा सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को सूचित तक नहीं किया। आधी रात को सिद्धार्थ शंकर राय और इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अध्यादेश सौंपा गया। उन्होंने बिना किसी आपत्ति या कैबिनेट नोट मांगे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। यह भारतीय राष्ट्रपति के पद की गरिमा पर सबसे बड़ा आघात था। आपातकाल के दौरान संविधान का बहुत ही क्रूर विरूपण देखने को मिला। आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 359 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। इससे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल था। इसका अर्थ यह था कि यदि सरकार किसी नागरिक को अवैध रूप से गिरफ्तार करती है या उसकी जान भी ले लेती है तो वह अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था। इसके अलावा 39वां संवैधानिक संशोधन 1975, इस संशोधन के जरिए कानून बनाया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह सीधे तौर पर इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बचाने के लिए संविधान में किया गया बदलाव था। इसके अतिरिक्त 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान, 1976 में लाए गए 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में इतने व्यापक बदलाव किए गए कि इसे लघु संविधान कहा जाने लगा। इसके तहत संसद के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संसद को संविधान में किसी भी सीमा तक संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अत्यधिक सीमित कर दिया गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जिसका उद्देश्य तानाशाही को वैचारिक अमली जामा पहनाना था। इसके अतिरिक्त आपातकाल की विभीषिका, ज्यादा जातियां, दमन और संजय गांधी का आतंक। आपातकाल के दौरान देश के कानून का राज नहीं बल्कि पुलिसिया दमन और तानाशाही का नाच देखा जा सकता था। सत्ता का वास्तविक केंद्र इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बन चुके थे, जिनके पास न तो कोई संवैधानिक पद था और न ही कोई प्रशासनिक अनुभव, लेकिन पूरी सरकार और अफसरशाही उनके इशारों पर काम कर रही थी। इसके अनुसार मीसा और डीआईआर का खौफ भी पैदा किया गया। इस कानून को विपक्ष के नेता मजाक में मदर इन लॉ इन सेफ कस्टडी कहते थे। इसके तहत पुलिस को यह शक्ति थी वह किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बनाए, बिना वकील की सुविधा दिए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। इस दौरान देश के लगभग 1,10,000 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। जबरन नसबंदी का क्रूर अभियान भी इसी दौरान चला। संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण सबसे ऊपर था। इसे लागू करने के लिए प्रशासनिक अमले ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और राजस्व अधिकारियों को नसबंदी के कोटे दिए गए। यदि वे कोटा पूरा नहीं करते तो उनका वेतन रोक दिया जाता था। उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में बसों को रोककर, बाजारों से नौजवानों, बुजुर्गों और यहां तक कि कुंवारे लड़कों को पकड़ पकड़कर जबरन नसबंदी शिविरों में ले जाया जाता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1976 में केवल 1 साल के भीतर 62 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई। आपातकाल के दौरान प्रमुख दमनकारी कृत्य में शामिल था न्यायपालिका पर हमला, प्रतिरोध की गाथा जब जनता और प्रेस ने संघर्ष किया, प्रेस का मूक और मुखर विरोध, कुछ साहसी अखबारों ने विरोध के नायाब तरीके ढूंढे, द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने सेंसर किए गए समाचारों की जगह अपने संपादकीय को खाली छोड़ना शुरू किया। यह खाली पन्ना सरकार की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा मूक विरोध बन गया। भूमिगत आंदोलन और सत्याग्रह, गिरफ्तारी से बचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संगठनों और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आपातकाल के खिलाफ गुप्त पर्चे बांटे और जनता को जागरूक किया। आपातकाल का अंत जनवरी 1977 में दुनिया के सामने अपनी लोकतांत्रिक छवि को सुधारने और खुफिया रिपोर्टों, जिन्होंने दावा किया था कि जनता इंदिरा गांधी के साथ है, के आधार पर इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने की घोषणा की।

0: मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव हुए, जनता का ऐतिहासिक फैसला आया और जनता पार्टी की सरकार बनी। संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता इस बात से होती है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केवल इतिहास की एक घटना पर आंसू बहाना नहीं है, यह एक जीवंत राष्ट्र की आत्मचेतना का प्रतीक है। संविधान हत्या दिवस हमें सचेत करता है कि न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए ताकि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
1: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दी भाषामा वार्ता। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। अब समय भएको छ हजुरहरूकै पत्रमा आधारित कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीतको। यस कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै सुनाउन गइरहेका छौं गायक कलाकार नारायण गोपालको स्वरमा रहेको यो गीत। र यस गीतको निम्ति हामीलाई पत्राचार गर्नुहुने श्रोता हुनुहुन्छ कुन्ती मुखिया, र उहाँले यो गीत सेन्ट्रल पाण्डम निवासी पूर्णिमा राईलाई सुनाइदिने आग्रह गर्नुभएको छ। हवस्त श्रोता, सुनौ यो पहिलो गीत गायक कलाकार नारायण गोपालको आवाजमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement.

0: प्रोग्रेस है।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
3: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
3: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप

0: मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रूचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने

0: की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चढ़नी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
2: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब

0: 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स हैं। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है और हर बच्चा हर इंसान एक स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 GW का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 GW टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड पे आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ, हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
0: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक UPI सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें UPI सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन है, और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब UPI को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की सब कार्ड कंपनीज हैं वो सब UPI इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती है। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है, ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो, एक्सपेंशन हो जैसे UPI का एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
0: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप UPI देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूं, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 रूपये से चालू किया था, आप 1 लाख रूपये तक UPI से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही

0: टैक्स इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन का रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है। आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बार प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की है, सेमी कंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कम्प्यूटर्स, ब्लॉक चेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फरक दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर यहां, R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी, सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIC बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और AI के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें AI टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसे दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AI की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और AI कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन 3 देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी IT कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया AI के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। AI क्वांटम मिशन पे आइए, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपको वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब इंक्रिप्टेड डेटा है।

0: इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं और 2015 में 81वें थे। अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए। जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है, उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

श्रोता, यसरी नै अर्को गीत सुनाउन गइरहेका छौं। फिल्म कश्मीर की कलीबाट कलाकार मोहम्मद रफीकु शर्मा।